0: कुछ उनकी सुने कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: जी सामिन, ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और मैं यानी खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामिन को आदाब।
1: वसीमा जी, आज हमारे साथ एक नए साथी शामिल हो रहे हैं।
2: अरे तशरीफ लाए हैं खलील शेराजी, लेकिन किसी तारुफ के मुहताज नहीं ये। खलील साहब नए नहीं हैं, यूं कहिए दोबारा तशरीफ लाए हैं।
1: तो जनाब खुशामदीद दीवान खाना में भी और जापान में भी।
0: बहुत शुक्रिया, आप सबसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जो सामीन पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनको बताता चलूं कि मैं हूं खलील शिराजी। 2022 से दीवान खाना टीम के साथ शामिल रहा, बाद ऐसा पाकिस्तान चला गया था। वहां से दीवान खाना के जरिए कभी कभार दोस्तों से मुखातिब होने का मौका मिलता रहा है।
2: अरे ये भी बताइए ना कि खबरों में तवातर से सामीन आपको सुनते रहे, और ये नए साहब नहीं हैं, ये हैं काफ़ी पुराने।
0: जी बिल्कुल, काफ़ी, मैं काफ़ी मुत्तफिक हूँ।
1: अरे वाह, अच्छा आप काफ़ी इस तरह कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो है शिराजी साहब कहीं मोहनजोदड़ो से तो खुदाई में नहीं निकल रहे। अच्छा ये बताएं शिराजी साहब कि कैसा लगा दूसरी मरतबा जापान आकर आपको?
0: जी बहुत ज़बरदस्त, आप खुद ही देखें, बाहर का मौसम हो, चेरी के फूल हो और टोक्यो जैसा शहर, तो हर दिन खुशी का एक त्यौहार बन जाता है। इसीलिए तो पूरी दुनिया से टूरिस्ट उमड़ आते हैं जापान में।
1: जी।
2: और आप कहाँ कहाँ गए जापान में इस महीने में?
0: मुझे किसी ने बताया कि सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से निपटने वाले कुछ लोग पाकिस्तान से जापान आए हैं, तो मैंने सोचा कि उनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, तो मैं सीधा उनके पास चला गया।
1: तो फिर क्या सीखा, हमें भी सुनाइए जल्दी से।
0: अब इतनी जल्दी भी नहीं सुना सकता।
2: चलें चलें, आराम से चलिए, पर चलिए ज़रूर।
0: जी जी हाँ, तो आखिर अप्रैल में महकमे समाजी बहबूद पंजाब के 11 अफसरान जापान आए थे। ये लोग सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद के मसले से निमटते हैं।
1: किसी मुतालिती दौरे पर आए होंगे वो?
0: ये जापान में अक़वामी तआवुन एजेंसी यानी जायका के ज़ेर एहतमाम एक ट्रेनिंग कोर्स में शिरकत के लिए आए थे।
2: अच्छा, आपने उनसे मुलाकात की, तो कैसी रही?
0: मुलाकात नहीं, मुलाकातें। मैंने उनसे वो सब कुछ पूछा जो मेरे जहन में था, और उनके जवाबात को रिकॉर्ड भी कर लाया ताकि सामीन भी इस गुफ्तगू का मजा लें।
1: अच्छा ये बताएं कि सिन्फी तशद्दुद की रोकथाम कैसे की जा रही है?
0: हुकूमत पंजाब 2021 से जापान के साथ मिलकर खवातीन को सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद से बचाने के लिए कोशिशें हैं।
2: अच्छा, तो फिर आपकी जापानी शुरका से भी मुलाकात हुई होगी?
0: जी बिल्कुल, पाकिस्तानी अफसरान के साथ साथ मुझे एक जापानी खातून से भी गुफ्तगू का मौका मिला जो पाकिस्तान में उनके साथ 2 साल काम कर चुकी हैं।
1: अच्छा शिराजी साहब, आगे बढ़ने से पहले मुझे आप ये बताएं कि सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद या सिन्फी तशद्दुद ये है क्या?
0: यही मेरा भी पहला सवाल था जो मैंने मोहम्मद सुलेमान साहब के सामने रखा। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब में प्लानिंग एंड इवेल्युएशन के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बताया।
3: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ्राहम किया। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, मैं डायरेक्टर प्लानिंग एंड वेल्यूशन हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी पंजाब पाकिस्तान में।
0: सर, ये ट्रेनिंग चूँकि सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद के हवाले से है, तो हमें ये बताइए कि सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद से क्या मुराद है, आम फहम अंदाज में, कि लोग समझ पाएँ?
3: अगर इस बात को आप आम फहम अंदाज में, तो जैसे कि लफ्ज़ सिन्फ से ज़ाहिर है, सिन्फ से मुराद है किसी की बुनियाद, किसी के ऊपर तशद्दुद करना कि क्या वो एक पर्टिकुलर किसी एक सिन्फ से बिलोंग करता है। मसलन कोई ख़ातून है, कोई बच्चे होने की बुनियाद पर, या किसी ट्रांसजेंडर होने की बुनियाद पर, तो जब कोई इस किस्म के तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं उसकी क्या सिर्फ उस सिन्फ की बुनियाद पे, तो उसको हम सिन्फी तशद्दुद कहते हैं।
2: अरे भी इस्तेहसाल की इजाज़त तो वाकई बिल्कुल ना होनी चाहिए, पता नहीं बेचारी कितनी खवातीन होंगी जो इस अज़ियत से गुजर रही हैं।
1: अच्छा पाकिस्तान में कहाँ कहाँ इसकी शरह ज़्यादा है, कुछ पता लगाया आपने?
0: वो चूँकि पंजाब की सतह पर काम कर रहे हैं, इसलिए सुलेमान साहब ने सिर्फ सूबे पंजाब के हवाले से बताया।
4: ठीक है, अच्छा पंजाब में सर क्या सूरत हाल है, कहाँ पे लोग इसका शिकार हैं, खासकर ख्वातीन, और कौन कौन से किस किस्म के तशद्दुद का वो शिकार हैं?
3: बेसिकली जो पंजाब में देखें, पंजाब पाकिस्तान में या पंजाब में कोई अथेंटिक अगर आप कहें ना डेटा, तो इस सिलसिले में कोई अवेलेबल उस तरीके से नहीं होता।

0: लेकिन अगर आप इसको देखा जाए तो पिछले साल 2025 में अंदाजन तकरीबन कुछ 30,000 के करीब खवातीन ने के रिपोर्ट हुए हैं केसेस। अब इससे मुराद मेरी ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 30,000 खवातीन के ऊपर, लेकिन ये तकरीबन 30,000 के करीब मुख्तलिफ लेवल पे, जिसमें पुलिस भी हो सकता है, जिसमें पंजाब में सेफ सिटी अथॉरिटी भी है, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अदारे भी हैं, जिसमें पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अदारे भी हैं, तो 30,000 से ज़ायद केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। और उनमें अगर जहाँ तक उसकी बात की जाए कि कौन से तशद्दुद है, बेसिकली जो चीज़ें अभी डेटा हमारे पास कुछ अवेलेबल है उसमें तो लाहौर क्योंकि सबसे बड़ा शहर है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग है, और उसमें जो सेक्स की बुनियाद पे जो तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए। लेकिन जो साउथ पंजाब है उसमें ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि वहाँ पे एक जिसको वो कहते हैं ना कि पेट्रियार्कल सोसाइटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे मर्द अपनी मर्दानगी को इसमें शो करने के लिए तो ज़्यादातर घरेलू तशद्दुद के जो केसेज हैं वहाँ पे। और यही वजह है कि पंजाब हुकूमत ने जो अपना सबसे पहला जो सेंटर वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाया था 2018 में, वो मुल्तान साउथ पंजाब पाकिस्तान में ही बनाया है।
1: बेहद हैरान कुन, सिर्फ पंजाब में और सिर्फ गुज़श्ता एक साल में 30,000, यकीन करना मुश्किल है।
2: हकीकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। सुलेमान साहब ने बताया कि बहुत से केसेस तो ना रिपोर्ट होते हैं और ना ही गिनती में आते हैं।
3: अरे वो क्यों भाई?
2: इसकी नफसियाती वजूहात हैं वसीमा साहिबा, जिनके बारे में मैंने माहिर नफसियात से पूछा जो खुशकिस्मती से इस ट्रेनिंग कोर्स में शरीक थी।
4: मेरा नाम आमना गनी है और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ शेल्टर होम यानी कि दारुल अमान हाफिजाबाद में, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब के अंडर आता है।
2: अब पंजाब की मैडम सूरत हाल क्या है, कहाँ पे लोग ज़्यादातर इसका शिकार होती हैं और वजूहात इसकी क्या हैं आपके ख्याल में स्पेसिफिक एरियाज़ का?
4: इसमें मेरे ख्याल में पंजाब में ज़्यादा अगर हम वायलेंस का रेशो देखें तो रिपोर्ट ज़्यादातर ये होता है बड़े शहरों में, क्योंकि वहाँ पे लोगों को नॉलेज ज़्यादा होता है, लोगों को अवेयरनेस टॉक्स ज़्यादा हैं वहाँ पे, ज़्यादा बिग सिटीज़ में अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से रिपोर्टिंग ज़्यादा है। लेकिन जो इसका शिकार ख़वातीन है वो बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा है, रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है हमारे ऊपर कि हमें ये बताया जाता है कि अपना घरेलू मैटर घर घर तक ही रखना, इसको आगे आपने लेके नहीं जाना। लिहाजा ये बैकवर्ड और रिमोट एरियाज़ में है ज़रूर, लेकिन ये रिपोर्टिंग इसकी कम है, रिपोर्टिंग बिग सिटीज़ में ज़्यादा है।
1: बहुत अफसोस की बात है। वैसे शाद अजीम आबादी ने कहा था, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है।
3: खदीजा, तशद्दुद जो चुपचाप बर्दाश्त करते हैं वो शायद समझते हैं कि घर की बात घर तक रहे तो अच्छा है।
1: यानी एक तरफ तशद्दुद करने की आदत और दूसरी जानब सहने की आदत।
2: सिर्फ आदत ही नहीं, कुछ नफसियाती वजूहात भी हैं। अच्छा मैडम, आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद जो लोग करते हैं जब ये होता है, इसके पीछे नफसियाती अवामिल क्या हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान ये करने पर मजबूर होता है? मैं सहने वाले की बात नहीं कर रहा, जो कर रहा होता है उसकी।
4: अच्छा, इसमें जो हमारे शेल्टर होम में आते हैं उस पर बेसिकली मेरी जो एमफिल की रिसर्च है वो भी शेल्टर वुमेन पे है, यानी कि जो ख़वातीन हमारे पास शेल्टर लेती हैं उन पे होती हैं। तो बेसिकली इसके कुछ डेमोग्राफिक्स हैं जो मैंने रिसर्च भी किए हैं, बकायदा मेरी एमफिल की रिसर्च इस चीज़ पे थी। वो मर्द हज़रात जो ख़वातीन से दूर रहते हैं, किसी भी जॉब के सिलसिले में रहते हैं, किसी भी फॉर एग्जांपल उनका ताल्लुक किसी ऐसे डिपार्टमेंट से है कि वो उनको जॉब की वजह से कारोबार की वजह से साथ नहीं रहते, तो इन द मीन वाइल उनकी जो साइकोलॉजिकली उनकी डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वो फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते। लिहाजा वो एक दूर रहने की वजह से उनकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर हम करें तो वो फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू दोज मैन जो कि अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं। तो जब कभी वो अपने काम से वापस आते हैं तो वो उनकी जो साइकी होती है वो उन्हें असर करती है और वो वायलेंस की तरफ जाते हैं। फिर उसमें कोर रीज़न ड्रग एडिक्शन की आती है, ड्रग जो जो हस्बैंड ड्रग लेते हैं वो भी अब्यूज़र्स होते हैं। फिर उसके अलावा कुछ चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस होते हैं, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी ने बचपन में फेस किया है अब्यूज़ को तो वो बड़े होके भी अब्यूज़र ही बनता है, तो ये पूरा एक साइकिल होता है। तो इसकी मे बी एक वो हम पढ़ते हैं साइकोडाइनमिक अप्रोच ना, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि उस मर्द को बचपन में उनके माँ बाप की तरफ से वायलेंस का शिकार हुआ हो या बुलिंग का शिकार हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके माइंड में बैठ गई हो और इस वजह से वो अब अपनी बीवी पे भी वायलेंस करता हो। और तीसरा एक सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव भी आता है जो कि हमारा पावर पावर एनालिसिस है कि हमारे यहाँ एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है एज अ होल, तो मेल की अपब्रिंगिंग ही इस तरह से की जाती है कि उसको फील होता है कि ही इज़ डोमिनेटिंग, ही शुड डोमिनेट हर वाइफ।

0: उसने अपनी वाइफ को डोमिनेट करना है, लिहाजा एक सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव बन चुका है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का।
1: दुरुस्त कह रही हैं। वैसे मेरे ख्याल में इन सब की जड़ें पितरशाही माशरे में काफ़ी गहराई तक व्यवस्थित हैं।
2: और अब हमें जापानी खातून के तासरा से भी आगाह कीजिए।
3: जी ज़रूर, ये खातून हैं उसामी मरी साहिबा, जो कि जायका की स्पेशलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान में साल 2021 से 2023 तक काम करती रही हैं। वो खवातीन के तहफ़ुज़ के मराकज़ और पनागाहें बतौर एडवाइज़र देखती रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सिन्फी तशद्दुद के शिकार खवातीन से बात करके वो हैरान रह गईं।
1: अच्छा खलील साहब, ये वही उसामी साहिबा है ना जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुतासरीन के लिए मंसूबे की मशीर थी?
3: जी बिल्कुल वही हैं, वो अभी भी जायका में पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं।
4: その時にすごく驚いたのが、若い女性の被害者が結構多くて、でその方たちはまだ。
2: मुझे हैरत थी कि वहाँ काफी ज्यादा मुतासरी नौजवान खवातीन थी, उनमें से कई अभी गैर शादीशुदा भी थी, लेकिन उन पर जबरदस्ती की शादी या वालिदैन की मर्जी की शादी मुसल्लत की जा रही थी। उन्हें वालिदैन के मुंतखब करदा शख्स से शादी करनी पड़ रही थी, उससे नहीं जिसे वो चाहती थी। नापसंदीदगी की वजह से उनमें से कई घरों से भाग गई। दूसरी तरफ ऐसी खवातीन भी थी जो पहले से शादीशुदा होने के बावजूद फरार हुई। ऐसे मामलों में मैंने सुना कि भागने से पहले उन्हें फैसला करना पड़ता है कि आइंदा किससे शादी करेंगी। इससे मुझे इदराक हुआ कि पाकिस्तान में खवातीन के लिए शादी कितनी अहम है, और शादी के अलावा अमली तौर पर तकरीबन कोई मुतबादिल बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए बड़ी चौंका देने वाली हकीकत थी। कई केसेस ऐसे थे जहां वालिदैन ने कहा तुम्हें इसी शख्स से शादी करनी होगी, लेकिन खातून चूंकि किसी और को पसंद करती थी और वालिदैन के मुंतखब करदा शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि अपने पसंदीदा मर्द से शादी कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो लड़कियाँ घर से भागी। इनमें से कुछ खवातीन मुकाबलतन तालीम याफ्ता भी थी। मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि फिर भी वो अपने खानदानों या माशरे के दबाव से बच नहीं सकी।
3: उसामी मरी साहिबा ने बताया कि अक्सर खवातीन 19-20 साल की थीं। मेरे ख्याल में इससे कम उम्री की शादी का पता चलता है।
2: जी शादी अनमोल रिश्ता है, लेकिन कहते हैं ना हर काम की एक उम्र होती है।
1: भी शादी बजाते खुद तो बुरी नहीं, लेकिन अगर कम उम्री में हो, खासतौर पर जबरदस्ती से कराई जाए तो मसला है ना।
2: जी बिल्कुल, अगर कोई खातून या कोई और सिन्फी तशद्दुद का शिकार है तो वो आखिर जाए कहाँ?
3: इसके बारे में मजीद तफसीलात तो हम अगले प्रोग्राम में बता सकेंगे, लेकिन फिलहाल मैं विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की हेल्पलाइन का नंबर बता देता हूँ। ये नंबर है 1737। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी उनसे रابطہ किया जा सकता है, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो सीधा आप उनके दफ्तर बजाते खुद जा भी सकते हैं।
2: जी हेल्पलाइन का नंबर है 1737।
1: खलील साहब, आइंदा हमें ये भी बताना है कि यहाँ सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद की शिकार खवातीन की दादरसी कैसे की जाती है।
3: जी अगले प्रोग्राम में ये सब बताएंगे, आप प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा।
1: और आज इसी रिपोर्ट की मुनासिबत से गीत सुनवा रहे हैं जो 2024 के यौम खवातीन के मौके पर जारी किया गया था। उनवान है बॉडी, इसे गुलकारा मालिया ने गाया है।
3: इस गाने का पैगाम है कि ये मेरा जिस्म है, बदकिस्मती है तुम्हारी कि मैं तुम्हारा खिलौना नहीं।
2: ये पैगाम खवातीन को उनकी कदरों कीमत समझने की तरगीब देता है। उन्हें बताना चाहता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती हैं।
3: हमारी दुआ है कि ये पैगाम उन तमाम खवातीन तक पहुंचे जो अभी तक अपने बुनियादी हकूक के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं।
1: तो आइए ये गीत सुनते हैं।